नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिख, नाम बिना नर कहीं न लिख। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमर कैसे राजमंडित।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन कर रहे हैं। ध्यान देना बाणी पातशाह आखदे हैं।

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज में

चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्रभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्रभूते स्वयं

पाई जाता है कीर्त तिहारी तो ना पार पाई जाता है कागज दीप सब करके कागज दीप सब करके अरसात समुंदर की मस्त है हम।

अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है

राग गौड़ी दक्षिणी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

ग्रस दे चमेले ग्रस दी चिंता इउं प्रतीत हुंदा है चौहीं पासी अग्नि दे भांबड़ मचदे हन पर बचदे कौन हन रखे केड़े जांदे हन सुरक्षित कौन हुंदे हन साहिब।

आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर, आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर, सिमरंत संत सिमरंत संत।

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नू सोल, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदत, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्ह दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो ये बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वश च नहीं। साडे जिहड़े ख्याल हन वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाऊ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकाण दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना अज अर्ज करांगा उन्हां नू लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्हां नू आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है बाणी च इस तरह आख्या,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसनु उन्हें देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनैक्टेड यूअर सैल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वॉच देम, सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार असवारी कीजिए दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे, जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वह है आत्मा, वह है वाहिगुरु जी की अंश, वह है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असी उसनु पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजिए, अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ?

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

हर हर चल देव धारे, हर हर चल देव धारे, शिव स्वामी सदगुरु अपना काज सब हमारे, पुंदार पूजा परमेश्वर, हर कीर्त तत् विचारे, पुनदान पूजा परमेश्वर, हर कीर्तन।

0: करबत करतब करत महामुघना, संपत डोल झोल संग झोलत माया मगन भ्रमत घोगना, सुत बनता साजन सुख बंधप तांस्यो मो बढ़यो सो घना, बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना, मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना, सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना, सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना।
1: सत सूरा सील बलवंत सत भाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना, जिस धीरज धुर धवल तुजा सेत बैकुंठ बीना, पर सह संत प्यार जे करतारे संजो, सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जो, नाम नाम नाम रस खान हर भोजन नाम रख सदा चाहे मुख मिष्ट बानी, तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गति अगम जानी, फुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यत जन्म कल उजरै गुर परस्यो अमर प्रकाश, बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद्धि बसै बावां जो तीन लोकांतर मोहै, हृदय वसै इक हियो सोय रस तिन ही जातो, मुखो भगत उचरै अमर गुर इतरंग रातो, मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो, मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो, सोय नाम भगत परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ दिन पायो, चरण तपर्स कियत चरण गुर अमर पवर रह, हाथ तपर्स कियत हाथ लगाए गुरु अमर पै, जी तपर्स कियत जी गुर अमर बन जाए, नैन तपर्स कियत नैन गुर अमर पिख जाए, श्रवण तपर्स कियत श्रवण गुर अमर सुन जाए, सक्यत सो हियो जित हियो वसै गुरु अमरदास निज जगत पित, सक्यत सो सिर जालप बने जो सिर निवै गुरु अमर नित, सक्यत सो सिर जालप बने जो सिर निवै गुरु अमर नित,
2: सत नाम करता सो दृढ़ नानक संग रियो, काते अंगद लैण परिगत तास चरण लिवरियो, तित कुल गुरी

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्थवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंत इक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरे आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लाए

ब्रह्मलो जय कृपाण भोलो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्माद सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अजोग्यो नहीं जाए पूर सर्व यो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इतई उतई सदा मुकते प्रभ दातो दातार परियो जातित इत सरना मिले दान संतरीन जे लग भौज धरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर बाबा दियो दर्श मन जाओ भगत इो मन ठहरा बलियो चिराग अंधियार में बलियो चिराग अंधियार में सब काली उतरी एक नाम धर्मा परगत सरलियार पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्मा जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ दनिया सत संतो समाचन अभला सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे

0: वाले वाले जाओ श्याम सुंदर को, अकात कथा जाकी बात सुनी। जन नानक दासन दास कहिए तो है, मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी। बाल बाल जाओ श्याम सुंदर को, अकात कथा जा की बात सुनी। जन नानक दासन दास कहिए तो है, मोए करो कृपा ठाकुर अपनी। मूह लालन स्यों प्रीत बनी रहाओ, तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंच।
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग लाइव गुरबानी कीर्तन 24 आवर्स अ डे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
2: Made in time.

सब तन गुरु सतगुरु गुरु सतगुरु जित मिल हर पड़ा तू तन तन सुमरत कर मैं तुझ बिन अगर न

अमृत नु प्राप्त कौन कर दे हम जिम जिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है ओ खुशकिस्मत गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रस्ता है और तीन भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती ओ बिन अमलां तो खीवे उन्हां नू झूठे अमल दी लोड़ ही नहीं जिन्हां दे अंदर प्रेम दी रत्ती ओ बिन अमलां तो खीवे अठे पहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईसर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाण वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तां दीवा बनाइए फिर उसनू पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा है सरसों किसा उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओले वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा दे जो भी जग गया दीवा फिर लोग आपे कहेंगे भी फलाने घर दीवा जगदे पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक दे दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक दे कन सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु दे प्यारे जो बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबो कुछ दिता साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धारनी बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद ते लक्ष्मी दास तुसी बाहर चले जांदे हो ए फिर उदास होके मेरे कोल आ जांदे ने ते कहिंदे ने बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी वे अगला भी कोई बापू दूजिया ने बापू अपने बच्चों मठियाइया लिया के देंगे खिलौने लिया के देंगे तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हूं पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हुण ना जा हुण ना परदेसां नूं जा तो प्यारी सत्संगत परमकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मी दास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता पुत्र जगत दा मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता दी छाती फड़ जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रां नूं उठा के ते बेबे वल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पालसी सारियां नूं जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिलारे बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोध मोहंकार दी अटवी साडी बेबे मेनू जान दे ना बिठा इत्थे संसार रोगी हो चुका है संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत बोले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वो इतों कुछ नहीं ले जाता ते जड़ा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگت پہلا سیو بولے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाकते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

उसके अंदर एक तकलीफ होंगी, एक दर्द होंगी है कि मेरे अंदर से अवगुण है, मन कुचज्जी, मैं कुचज्जी हूं, मैं कुचज्जी हूं। जितनी देर तक इंसान इसमें एडमिट नहीं करता, गोज ऑन हाइडिंग इट, अवॉइडिंग इट, वो इलाज किस चीज का कराएगा? वो कहते हैं मन कुचज्जी अमावन डोसड़े। अमावन का मतलब होता है कि गिनती मिनती तो बाहर, कहते जेडे मेरे डोसड़े हैं, दोष हैं, वो अनलिमिटेड हैं, मेरे अवगुण जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। मन कुचज्जी अमावन डोसड़े हों, क्यों सोहरावन जाओ जियो, किस मुंह नु लैके मैं उसनु मिलन जावां। सो भगत जी की पहली जो तब्दीली है उन्होंने जीवन दे विच, कि उन्होंने अपने अंदर नु सही तरह देख लिया, अपनी ट्रू पिक्चर नु देख लिया। और उस तो बाद वो कहते हैं हूं मैं कदों तक सौ सकता हूं। कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि असी सत्संग दे विच सुन के ते चल जाइए, बाहर जाके फिर भूल जाइए। देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड, हु लिसन, बट देन दे डोंट टेक एक्शन। फर्स्ट अवेयरनेस तो बाद एक्शन लेना बड़ा जरूरी, नहीं तो वो एक होर पैटर्न बन जाता है। देन यू क्रिएट अनदर पैटर्न इन साइड यू, कि सुन भी लिया अते एक होर आदत बना ली कि सुन के फिर चुप कर गए, फिर सौ गए। भगत जी कहते नाउ आई कैनॉट गो बैक टू स्लीप, आई विल हैव टू डू समथिंग। तो की करते हैं हुण अगली लाइन दे विच आंदा है कि वह हुण सौंदे नहीं हैं, अवॉयड नहीं करते, जाके भुल नहीं जाते। देन ही इज इन एक्शन, तो की करते हैं आओ प्रेम नाल सुनो उस लाइन नूं पहला नूं।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू